0: एक नहीं आस के दूजा लग जाए, नानक आसक कांडिए सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदा मंदा होए, आसक एहो ना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे मुड्डो कुत्ता जाए।

जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

वन्यो हो केल विखो करता कारी आया नस वन्यो हो केल विखो करता कारी आया दूत है दहन पया गोविंद प्रगटाया श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाला प्रीतम अठवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरि कृष्ण साहब जी महाराज जी ने अज दे शुभ दिहाड़े पिता गुरदेव सतवें पातशाह धन धन श्री गुरु हर राय साहिब जी माता कृष्ण कौर जी दे ग्रह श्री कीरतपुर साहिब जी विखे अवतार धारिया तिना सतगुरां दा प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी शरदा भावना उत्साह दे नाल मना रहियां हन जथा शक्त भेटावां अर्पण कर रहियां हन शाम नू बेअंत संगता दीपमाला कर रहियां हन सतगुरु जीओ मरामत करनी सरबत साध संगत नू अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां यात्रा सफला करनी हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवना नानक नाम चढ़दी कला।

एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावली जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए धन धन पिता धन धन कोल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए धन धन गुरु जिन नाम अराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए हर सतगुर मेलोह दया कर जन नानक धोवै पाए श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो।

अंगद किरपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर रामह दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती अकिरत कान मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे दर्श

तम कर स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा काम बंत कामी बहु नारी पर गृह जोह ना चुके दिन प्रत करे करे पश्चतापे सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमूल अमृत एक निदाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुर ते जाना हर हर नाम अपार अमूल अमृत एक निदाना

बात दे रहा मतबात अपना करने को जब गतबात श्याम तो जिन सब की डाला सब तेरे पास तेरा कागला तेरे करना नहीं तुम करो मन महता बिना अपने आप जर सर्व कला पुरुष भूमि से दत्तवता दान कला सुंदर आत्मा दत्तवता

नानक दा संदास तुध आ गए बिनवता स्लो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगर जगत चंगे आया बुरे आईया वाचा धर्मूर करमी आपो अपनी के नेड़े

देह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।

महत, दिवस रात दोय दाई दया, खिले सगल जगत, चंगे आइया बुरे आइया, वाचे त्रम हदूर, करमी अप अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहाऊ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारी तारी है, चौने चौने सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करियहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियह हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा।
अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत भुज खाने बहोरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

हार मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हार गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापय। गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम तत् कर भोगो। बिनवंत नानक प्रभ आप मिलया कह नानक प्रभ आप मिलया। करण कारण जोगो गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर तारे। दर्स सफलियो दर्स पेखियो मन निर्मल उजियारी। बिसम बिसम बिसम पही आग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी। सतगुर सत सतगुर कै शब्द सत। सत साध संगत गुर सत सतगुर कै शब्द।

तेन तेल नाही कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोल को हीरा गोरे दीनो मंतानी

प्रगट्यो ज्योति सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कहो नानक निःचल कर बाध्यो, गोर कियो बंधनी। प्रगट्यो ज्योति सहज सुख शोभा,

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाढ़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सुकह टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सो कुरसो चटिया, तोद डठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, हो सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु, साहिब जी तनासरी महला

लपट रहे माया रंग मात, लोचन कछु न सूझे, वडे वडे राजन यार भूमन, ताकि त्रिसन ना भूजी, लपट रहे माया रंग माते।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद।

0: जावे पूर सगल्या भाव लिखिया सिरलेख नानक निरभो निरंकार सच एक महला पहला
1: नानक निरभो।

अंडर जेरजुत पूजा खान सेत जाओ सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ।

तुर करम जिना को तुद पाया ता तिनी खसम त्याया इना जनता कैवस किछ नाही तुद वे की जग तू पाया एक ना नो तू मेल लह का पुत दुख आया तुर करम जिना को तुद पाया ता तिनी खसम त्याया इना जनता कैवस किछ नाही तुद वे की जग तू पाया एक

प्रहलाद सुदामा कुभ भगत हर के जोगण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर।

0: जय सतगुर सिमरंत नयन कहते मर मिटे खेन, जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम जनो देन, जय सतगुर सिमरंत जे के तप्त मिटावे, जय सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावे, सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो, जे सतगुरु लग पाइए सो सतगुर सिमरहो नरो, जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड्यो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रकट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास, कव केरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानकुर, तिम गुर अमरदास कै कुर रामदास।
1: नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लेव लाई, ताते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीवर खाई, गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही न जाही, सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई, मोह मल व्यवस कियो काम गए केश पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान सो चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने, भव सागर बंध्यो सिख तारे सो परसन, सिर आतपत सच्चो तख्त जोग भोग संजुत बल, गुर रामदास सच साल पण तू अटल राज अपग दल।
2: श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर, श्री प्रहलाद भगत धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, सादिक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुकत न होए, गुर नानक निकट पसै बनवारी, तिन लहणा थाप जोत जगतारी, लहणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम खै निद अप्यो, अप्यो हर नाम खै निद चौं जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंद जो चरण शरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं, सत गुर गुर से

0: गरु सुख पायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो।
1: सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कोर निह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कच हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो हम।

0: आया मोह परम पैपुल सुत दारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखू सरनाई
1: सो कहो टल गुर सेविया एहन सहज सुपाए दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख होवे सिफत संबंधी नूर अरसह कुरसह सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सब नांद सजन सचा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबनां दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुर गोविंद सलाही है पाई जिस ते जापै तथ

अपने दुख दर्द का हंता रहाओ, जाके कर सब किस है पाई, नौ निद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई, शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सरेविया पाई, भ्रम भौ होवै नास मिल संत सभा मन मांझिए पाई।

कमल होवे परगास, गुर वचनी सुख उपजै भाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए भाई, होइए सब की तूर।

चेत आवे। चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिबा तहां तहां रच्छे आरे आए ता।

है, दर परवान होवे, परवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, सुख होवे

पौड़ी सतगुरु विट होवारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जंदी है नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहित है विरले कि न विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा।